0: 子比更等增无林冲比怕米及黑日的努力黑日子及阿妈几人去比和日不及和罗不过嘛
1: 还加十次个五马里通比娘子间这么的财富冲清的里最近的三位怕个家让当是南部
2: 冲清的啦
3: यार सेदंग संगना जितना वार्कम देगा सिलान चित शिंखे जोंगरगने कंगन छापतुं बात सिलांग भी शाचुं चंबा से ने सिरगन्यामो सिलान न्याम सुजी जुईल